0: आओ पहला सिमरन करिए, फिर कृपा कौर तुसी आज जपजी साहिब करो, मैं जाप साहिब करांगा, सिमर सिंह तुह प्रसाद सवाइये करेंगे।
1: मैनू बहुत भूख लगी है, आओ छेती छेती पाठ करिए ताकि मैं नाश्ता कर सका।
2: कि मैं अरदास भी कर सकती हूँ?
0: आओ अनंत साहिब करिए,
1: मैं उच्ची उच्ची गावांगा।
2: मैं हर वेले कीर्तन सुनना पसंद कर दिया।
0: वाहेगुरु जी दा शुक्र है जिसने बास्केटबॉल दी खेड बनाई है। मैनू बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है।
1: शुक्र है मेरे कोल एवेजे बूट हन। मैं किन्नी उच्ची छाल मार सकदा हां।
2: मैं शुक्र कर दिया कि मेरे को तुहाडे वर्गे वीर हन।
0: ओ वेखो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पिछे पंच प्यारे खड़े हन, आओ ध्यान नाल हुक्म सुनिए।
1: मैनू उना दिया वड़िया किरपाना बहुत चंगिया लगदिया हन।
2: एक दिन मैं भी पंज प्यारियां विच शामिल होवांगी।
0: इस शब्द विच एह सिख्या मिलदी है कि सानू वाहेगुरु नू सदा याद रखना चाहिदा है।
1: चलो सारे इकट्ठे शब्द गाइए।
2: मैनू तबला बजाना बहुत पसंद है।

0: उग गए अते बंजर जमीना भी खूबसूरत संघने जंगलां विच तब्दील हो गईयां। एक महीने दे समय अंदर सिमरन बार गई अते ओस ने एक बेहतरीन नजारा देखिया। ओस ने अपने उपर आकाश विच दर्जना ही काले बदल वेखे। ओस दे चेहरे ते एक बहुत वड्डी मुस्कुराहट सी अते ओस दियां पूरियां अखां खुशी नाल चमक रहियां सन।
1: रुख मीन लेके आ रहे हन, ए काम कर रहा है।
0: कुछ मिनटां बाद सिमरन खुशी नाल मीह विच नचण लग पई। पानी दियां बूंदां विच उछलदी होई अते गोल गोल घूमदी होई। जिवें जिवें दिन बीतदे गए दुनिया विच होर रुख उगदे रहे अते सारे पासे सब कुछ फेर हरा भरा हो गया। लोग खुश अते आनंददायक हो गए अते इस सब लई उस एक रब वाहिगुरु जी दा बहुत धन्यवाद है।
2: ऐ तां बहुत ही सिख्या प्रद कहानी सी। अजिही होर कहानियां वास्ते सिखनेट दा ऐप डाउनलोड करो।